या धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदरासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो

कहाऊ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धां पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धी किने ना पाईया, करम मिले नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा।

सुत बनता कोए न किस की धरिया सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया उडे ऊड आवै सै कुसा तिस पछ बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल।

निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावै हर त्यावै तुद जी। से जन जुग मैं सुख वासी, से मुकत पहे जिन हर त्याया जी। तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी। तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी।

तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाता मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला

नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवां, पई परापत।

उन्नति चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम का वह, आप हाथ दय मोहे बचावह। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन को आज संघरिय।

जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुच जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा।

नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असम।

महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार काचीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहि पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करू रणकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवन मरे। पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक ना मानेओ।

तेरा है। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटाओ, जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे, पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे।

जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एहे वसत तज

पावड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, पहु जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवै तुद आहे। सलोक महला पांजवा अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सत गुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। सत गुर से ती रत्या दरगह पाई ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वथ दे, जग मह उत्तम काटी है वैरले के महला पंजवा।

0: धन गुरु अंगद देव महाराज सचे पातशाह जी अपार कृपा कर दे ने जिस प्यारे सोने हो तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ता कै पाछ
1: जीवन
0: जीवन किन्ना क गुरु नाल प्यार है। धन गुरु अंगद देव महाराज, धन गुरु अंगद देव महाराज सचे पातशाह जी अपार कृपा कर

दर्शन परसे गुरु जन्म मरण दुख हो वै सिफ तख समि नूर अरसह पुरस तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म।

सब किछ तुम ही ते हुआ, आप बणत बनाई। दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। सब किछ तुम ही

ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जब तब पूजा, प्रभु कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभु कै सिमरन तीरथ इसनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन हुए सुफला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए, प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माही समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दसन दसना, प्रभु को सिमरह से तनवंते, प्रभु को सिमरह से पतवंते, प्रभु को सिमरह से जन परवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अनंद कनेरे, प्रभु को सिमरह बसह हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु ना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निहचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जान जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन।

अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हो वैत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिक न बुझावै हर का नाम जपत आघावै

नानक गुरमुख परम गत पाई, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जप तह पार पराही, अनिक बिघन जय आय सुंगार, हर का नाम तत्काल उदार है।

अनिक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबू न तूवै, हर का नाम कूट पाप खूवै। ऐसा नाम जपू मन रंग, नानक पाइए साध कै संग। जे मार के गने जाहे न कूसा, हर का नाम उहा संग तूसा। जे पैटै मां अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महा प्यान तपत बह काम, तह हर के नाम की तुम पर छाम। जहा त्रिखा मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जनकूट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नु दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग विड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। ए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सर थीवे। अग्न माहे हुमत प्राण, कनिकस्व है वर भूमदा। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावै, ताओ पी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही। मन कामना तीर दे छुटै, गर्भ गुमान न मन ते उठै। सोच करै दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबू न बिखिया टरै। जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध का हुई काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पथत बहमूच। बहुत सियाणप जम का भव व्यापै, अनिक जतन कर तृष्ण न त्रापै। भेख अनेक गनी बुझै, कूट पाव दर गैनी सिजै। झूठ सुनायु पयाल,
मोहि व्यापह माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने। गोविंद भजन बिन तिन नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाय। नानक बोले सह सुभाई, चार पदार्थ जी को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, सा संगे होमे छूरे। जे को जन मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रदर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सासंग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते उच्चा। जाका मन हो सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना, पेके सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्ता

सगल कटा कौ देव दान, करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जान हो आपे, अपन संगा प्रवराते, तुमरी उस्त तुम ते हुए, नान कवर न जान सकोए, सर्व धर्म है सृष्ट धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसु रसन बकानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जे कट वसै हर नाम, श्लोक निर्गुण यार एने सुप्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस की तिरख, नानक निभरी नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सा सुवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिने उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, भर जो गुण भोजन सुख सूद, बिरध पया उपर साख सहन, मुख पयाओ बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै, जे प्रसाद तारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संघसै, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक कमुल्ला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संसात बसा, दीने हस्त पाव करने तरसना, तिसे त्याग और संरचना, इसे दुख मुड़ंद व्यापे, नानक काट लिहो प्रव्यापे, आदंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निट पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दर गहमान, तिसे बिसारे मुग्ध जान, सदा सदैव भूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै, जो चढ़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्द प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतत विकराल, नान काड लिहु प्रभ दयाल, करतूत पशु की मान सजात, लोक पचारा करै दिन रात, बाहर भेकंतर मल माया, छुप सुनाई कुछ करै छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लूप सुआन, अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पात्र कैसे तरे अथाहा, जा कै अंतर बसै प्रव्याप, नानक ते जन सह समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहु ऊड़ निभावै, कहा बुझारत बुझै डूरा, निष्कहिए तो समझै पूरा, कहा बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तो पी सुर भंग, कह पिंगुल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हाँ उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाय सुआवै न चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत, बलवा के गृह भीतर बसै, अनद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर्मान मने प्रतीत, काल नयावै मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बेकार महा लोभ त्रोह, आहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी, तुमरी गात्मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै, लागे आन सुआए, नानक न सी जई बिना वै पत जाए, अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै, एक भी न दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहु कहा करे, जिस ठाकुर स्यो नाहीं चारा, ताको की जय सद नमस्कारा,
ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਊਠਾ, ਜਿਸ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਅਗੰਤ ਸਾਹੁ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈਣ ਦੁਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸਾਹੁ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਪ ਹੀ ਕੋਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੈ, ਜਿਸਕੀ ਬਸਤੀ ਸੇ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਤੈ, ਉਸਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ, ਬਿਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪੁਛਤਾਵੈ, ਜੂ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹੋ ਤੈ ਅੰਧਾਰ, ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ, ਤਾਕੂ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹੇ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸੁ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ, ਮਿਥਿਆ ਧਰੂ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਪਸੂ ਪ੍ਰਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹੀ ਰਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸੁਵਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ, ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ, ਬਿਰਤੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਯਾਰ ਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ, ਬਿਰਤਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖਾਵਤ ਤਾ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੀ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਰਹਿ ਤਵਰ ਕਚਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਿਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਡਲਾਵਤ, ਜਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਉਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਇਆ ਪਹਿ ਮਾਨੈ, ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ, ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸੁਮਾਏ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ, ਸਲੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਣ ਸਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੀ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਲਾਵਹਿ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਅਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹਿ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਤਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈਜੈ, ਮਨ ਅਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਕਾਨੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉੱਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਸਤ ਸਵਾਰੀ,
मन तिस प्रभ को कबहु न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत्य सहते आई सहते आई जो एक अलखै इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदानु मन आठ पैर कर तिसका ध्यानु। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सात सात चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुनै करन नाद जे प्रसाद भिखै बिस्माद। जे प्रसाद बोलै अमृत रचना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै। ऐसा प्रभ त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्योराच। जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी माया आप हु कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगै हरनाथ नानक इन कै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचरज कथा स्तुवदी। साधक संग मुखु जल होत साध संग मन सगली खोत। साधक संग मिटै विमानु साधक संग प्रगटै सुगयानु। साधक संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन। साधक की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साधक शोभा ब्रह्माहि सुमानी। साधक संग गोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै। साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कत हूं तावै साध संग स्थित मन पावै। साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग ना भीगा पैर। साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साधक संग ना ही हो ताप साधक संग तजै सव्याप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कब हुता वै साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त गोचर लहै साधु कै संग अजर सह। साधक संग बसै थानु छै साधु कै संग महल पहुँचै। साधक संग दिड़ै सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निदानु नानक साधु कै कुर्बानु। साधक संग सब कुल उदार है साध संग साचन मीठ कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को बरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सब थान गामु नानक साध कै संग सफल जनामु। साध कै संग नहीं कछ कालु दर्शन भेटत होत निहालु। साध कै संग कलुकत हरै साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै साध के संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उतरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ। साध के संग न मन ते बिसरै साध सुन सर पर निस्तरै। साधक संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी।
साधक संग मिटे सब रोग, साध संग नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जीता सुने तीता बखिया न, साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर, साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूझते मुची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्यमान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक, ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यों पाव का सह सुभाऊ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगाश, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच दे उच्चा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जिन पै नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नाथ मरस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कचपुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी कु प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी कहो सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहि मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक और धारै जो अंतरनाम, सर्व में पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो, मन में प्रीत निरंजन दर्शो, परत्र रूप न पेखै नित्र, साधक टहल संत संग हेत, कर्ण सुने काहू के निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मत देखो ऐसा परसो, वैष्णो सोजी सुपर सो प्रसन्न, बिशन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुआ नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहु फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब पर होवत कृपाल,
ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਹੋਵੈ ਸੁਨੂ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਸੂ ਪਾਪਾ ਮਲਕ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤਨੀਤ ਮਨ ਤਣੇ ਅਰਪੈ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤੁਮੈ ਸੁਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਵਧੇ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾਇਆਵੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਜੈ ਮੂਲ ਸੁਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਸਤੂਲ ਚਉ ਵਰਨ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚਉ ਵਰਨ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸਾਸੁ ਪਾਵੈ ਜਿਨ ਕੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰੈ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪਾਥਰ ਕੋ ਉਤਾਰੈ ਸਰਬ ਰੂਪ ਕਾ ਉਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮ ਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨ ਦਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਜਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਸਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਬਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਈ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕੋ ਪੁਰ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰੂ ਆਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੀ ਸ੍ਰੋਤੀ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗਾਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋਹਿ ਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਹੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੀ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਬ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੋਨ ਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨੁ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸਤਾਮ ਸਾਧਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖੀ ਨਿਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਕਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਵੈ ਰਾਖੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਂਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਇ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
कई कोट, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जूत किन्नु विस्तार, कई बार पसर पासार, सदा सुदय के कंकार, कई कोट किन्ने पपात, प्रगते हुए ब्रह्मा समात, ताक अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तुम प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नित्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सत सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै तुमरा सुख सह सुमावै, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहार ने जल तल मही अल सो इष्ट पदी, करण करावन करने जोग जो तिस भाव है सोई होग, किन मैं थापु तापन हारा तने किस पारा वारा, हुक्मे तारा तार रहावै, हुक्मे उपजे हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देख अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावै मानुख बत पावै, प्रभावै ता पाथर तरावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै ता हर गुण भाखै, प्रभावै ता पतत उधारै, आप करै अपन विचारै, दुआ सिरिया काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए तन सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपना बचै, भरमे भूला दह दिस तावै, निमख माय चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा न गनै जगदीश, जियो पिंड सब तिस की रास, कट कट कून ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही सहात, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी पपुरा जियो, जो तिस भावै सोई फुंथियो, कब हूँ ऊंच नीच मैं बसै, कब हूँ सोग हरख रंग हसै, कब हूँ निंद चिन्ह व्यवहार, कब हूँ उबकाश पयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावन हार, कब हूँ नृत्य करै बहुपात, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू माँ क्रोध विकराल, कबहू सर्व की होत रवाल, कबहू हुए वह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत में आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभु राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू हुए पंडित करे बख्यान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबू तट तीरथ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, निक जुन पर मैं परमिया, नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावै, ज्यों प्रभावै तिवै निचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा वर न कोय, कबू सा संगत पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर हो ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नामृत एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कह सत कुर्बान, श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आप निवार तले, बटे बटे अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावै जन्म रह बहु जोन परमावै, धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्ता कै सुख पावै, धनवंता होए कर गर्भावै, तिन समान का संग न जावै, बहु लश्कर मानु ऊपर करे आस, पल भीतरता का हुए बिना, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में हुए जाय पसमंत, किसै न बदै आप अहंकारी, धर्म राय किस करे खुआरी, गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर फिर अवतार, अनिक जतन करात्मनि द्रवै,
हर दरगह को कैसी गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकत न आवै सर्व की रिंजा का मन होई कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोई जब ही जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन संगमाई तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लग कोट थावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग बिकिया के करे न तृप्तावे खप खम रह बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ वृत्ति सब का जय नाम रंग सर्व सुख हुए बड़भागी किसे प्राप्त हुए कर्ण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करी तैसा हुए आपे आप आप रस हुए जो किछ कीनो स्वप्न रंग सब ते दूर सबु कै संग बुझे देखे करे विवेक आपै कापै अनेक मरे न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा सुनाए आप उपदेशै समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्तार सब कछु उसका करने हार उसते पिन कहो किछ होए तांत नंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आमन अपने माही नानक कीमत कह न जाई सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परे सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदि संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन कागज लवै संतन कै दुखन सर्प जून पाए संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए ना संत दुखी का ताव को नाहे नानक संत भावै तो पीगत पाए संत का निंदक मा अत ताई संत का निंदक किन टिक न पाई संत का निंदक मा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज के हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत भावै तो उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का निमित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म में मरे संत की दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावै ता ले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोता जो सास बिना मृत की लोता संत के दुखी की जड़ किच नाहे अपन बीजा पे ही खाहे संत के दुखी कवर न राखन हार नान संत पावे ता ले वार संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव किंदन नहीं त्रापै संत का दुखी छुट्टै अकेला ज्यो बुआड़ तिलके तमाही दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथिया कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजै न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा
संत कह दुख न दृष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, पया कीर्तन मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोई, सब घट किसक्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुति करो दिन रात, तिसै त्याहु सास विरास, सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोती, अपना के लाभ करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे ते सब नाम दे, बड़भागी नानक जन शेष लोक, तजो से आनक सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय, अष्टपदी मानुक की टेक वृति सब जान, देवन को एक भगवान, जिस कह दिया रह अघाय, बौर न तृष्णा लाग आये, मारे रखे को आप, मानुक है किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म भू सुख होए, तिसका नाम रखंट परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघन न लागै कोए, पुस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना मृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जल मथा, बड़भागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, तुत कियो सो जी जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अंतिन कीर्तन केवल बखियान, गृष्ट मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जी जन की आसा, तिसकी कटिया जम की भाषा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागै दुख, जिसको हर प्रमंच त्यावे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तब सब बुझिया, जब देखू तब सब किछ मूल, नानक सो सुख न सोई असूल, न किछ जन्मै न किछ मरे, अपन चलता ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनित जुग तृष्ठाप उताप, अविनाशी नाही किछ खंड, धारण तारयो ब्रह्मंड, अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जपहि निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करह बड़ पागै, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम करमान, जो किछ करै सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए होवै सो होए, करनै हार पछाणै सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाये, उहे सुख निदान उन्हु बने आए, आपस को आप दिनु मानु, नानक प्रभु जन को जानु, सलोक सर्व कला परपूर, प्रभु बिरथा जानन हार, जाकै सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गाडन हार गोपालु, सर्व जी आया फे प्रतपालु, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बिरता कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभु आपे आप, आपन की या कछु न होए, जेसो प्राणी लोचै कोए, तिस बिना ही तेरा किछ काम, गत नानक जपे कर नाम, रूपवंत होए नाही वो है, प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनवंता हुए क्या को गर्व है, या सब किस तिसका दिया दर्व है,
अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वह जे को हुए वह दातार तिस देन हार जान गागार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग जो मंदिर को थामे थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन ज्यो पाखा नाव चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन हुए बिगास जो माह ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइया पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रे और असलो भी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत चेती कर जाहे जिस वक्कर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लेहु मन मूल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत संचाल अवर त्याग विखिया जंजाल धन धन कह सब कोए मुख उजल हर दर गह सोए हुआ पार विरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनिक बिगंते साधु रखे हर गुण गाय अमृत रसाखे ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जीवालन हारु भूखे को देवत आधारु सर्व निदान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाहे सब किस तिसका करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सूजन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रचीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जा कै हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दिल सचा आकार सच वरत सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाई नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्ट प्रदीप अविनाशी प्रभ मन में राख मानुकी तू प्रीत आग तिस्ते परै नाही किच कोय सर्व निरंतर इको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक कह मन हो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रू मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपीश्वर गृष्ट में भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुर का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितनाही सगल देवहारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाई जन्म रह फिरिया वह जाई ऊच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भीख करे एक रंग नाना बिद किनु विस्तार प्रभ विनाशी एकंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे हो पूर्ण सब ठाई नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाउ जप जप जीव नानक हर नाउ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार
नाम के तारी पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाहि समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सपली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने हार अवर्ण भूज करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भाव है सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काट नहार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागे गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवतार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सबतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस जसुनता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रव्याया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिस ते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहिले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई बूजै बूजनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारै नानक सो सेवक साथ साथ सुमारै अपने जन का परदा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखै ताकि गत मित कोई न लाखै प्रभ के सेवक कौ को न पहुंचै प्रभ के सेवक पूछते उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल रखै भस्म करै लश्कर कोट लाखै जिसका सास न काढ़ता पोता को राखत धिक्कर हाथ मानस जतन करत वफात तिसके करत बिरथे जात मारण राखै वरण कोए सर्व जिया का रख सोए काहे सोच करै रे प्राणी जप नानक प्रभु अलक विडानी बारंबार बार प्रभु जपियै पी अमृत मन तंत्र पियै नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपतानी मंत्र नाम मैं नाम समानी उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जसे पा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करै भगता तुम कह चाई प्रभ अपने शिव रह समाये

का अवस्थपदी पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर फेक साथ साथ सिमरो गोविंद मनंतर की उतर चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु सात संगगन सागर तरहु हर तन के पर ले हो भंडार नानु गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उदार आप करै लोक कै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उतरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भय सबरी अमृत नाम साथ संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन वसै सुहोत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब त्यूच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन काट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कहमत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भनी गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत हुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन बिश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्त कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए परीत तिस जन आवै हर प्रभ जीत

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचा सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक ना चलै नाल किव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तन

दूर कथ ना कथी ना आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै बेपरवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फिर के अगै रखिया जित दिस दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानी है सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावी गुणी ने धान गावी है सुनी है मन रखी है पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई बुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जेति सुपावा विण पाणे के नाए करी जेति सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा वेच जानी है नाल चलाए सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीपलो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है अठ सठ का इशनान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागे सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सारा गुणा के गाह सुना है सेख पीर पात साह सुना है अंधे पावै राह सुना है हाथ होवै असगाह नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पछुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना सुरत होवे मन बुद्ध मन्ना सगल पवन की सुध मन्ना मोहे चोटा ना खाए मन्ना जम कहे साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना मार्ग ठाक ना पाए मन्ना पत सिउ परगट जाए मन्ना मग ना चले पंथ मन्ना धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावह मोख द्वार मन्ने परवार साधार मन्ने तरह तारी गुर सिखो मन्ने नानक पवै ना भिखो
ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंचै सो है दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करै विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझाए होवै सचियार तबलै उपर किता पार धरती होर परै होर तिस ते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए पार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाखो खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पाणी धोताए उतर सुखेह मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहि कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति माह कवण जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपौ जाने अगै गया ना सो है
ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਿਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੀ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੁਨਾ ਵਿਸੁਰਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਕਮਾਏ ਕਿਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਦ ਅਪਾਰ ਕਿਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟ ਹੇ ਵੇਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ ਏ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹੇ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੈ ਹੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਣ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖ ਹੈ ਬਰਮੇ ਆਖ ਹੈ ਇੰਦ ਆਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖ ਹੈ ਈਸ਼ਰ ਆਖ ਹੈ ਸਿੱਧ ਆਖ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਆਖ ਹੈ ਦੇਵ ਆਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕਿਤੇ ਆਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ ਕਿਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸੁਵਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇੰਦਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਸ਼ ਪਾਇਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ
ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਬੇਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ, ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ ਲਿਖਿਆ ਵਹਿ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇਕੀਸ, ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਾਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੂੜ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਸ਼ੋ ਤਾਏ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੂਰਤ ਮਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧ, ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ।
तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ीऐ शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं शपै छंद त्वा प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वा सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अशेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं तिरमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं तिरवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरमे नमस्तं जलासरे नमस्तं निरासरे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसं अदेसे नमस्तं अपेसे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवै नमस्तं अपेवै नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरने नमस्तं अमरने नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तं नृसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपूखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता
नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद तुआ प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंत हैं अबंध हैं नरबूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजा हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं नृसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं आगम हैं अजम हैं अपूत हैं अशूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबा हैं आगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ती बेभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोग वेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोग वेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इशनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध धा बुद्ध दा बिरद करता अदु उर्द अर्धं अघं ओग हर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्वंग निरनाथे नमस्वंग परमाथे नमस्वंग अगंजे नमस्वंग अपंजे नमस्वंग अकाले नमस्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोख शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा दिशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेख तताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे
एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जानहि जेह भेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरै चतुर चक मानई पुर तीन लोक चौ दह के बिखै जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गडन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उसत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक नेत पाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपहंग उपमा अनंग अनुपव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु शाहान शाह राजान राज पानान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम नृपय निकाम आतदूत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी शांत त्वा प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुयंग प्रयात शांत चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काये अजन्मं अजाये न चित्र न मित्र परि है पवित्र प्रथीस अधीस अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वा प्रसाद काथते के आशेज देस के अभेज पेस के अगंज कर्म के अपंज परम के अभेज लोक के अदित सोक के आवतूत वर्ण के विभूत करण के राजं प्रभाह के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा आभरण के जागतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनपाओ अनुपय के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहीन के एक अधीन के रोजी रजा के रही मेरे हाक के पाग व्यव है के गैबुल गैब है के अपुल गुना है के शाहन शाह है के कारण कुन दह के रोजी दहन दह के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीनय के सर्वत्र लीनय के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सोखय के सर्वत्र पोखय के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र मान्य सदैव।

प्रभुगत प्रभा हैं, सुजुगत सुदा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अभेदी अनूप हैं, समस्त उपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्त सलाम हैं, सदैव अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, उवंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं, अशिज हैं, अशूत हैं, किनर्कं प्रणाश हैं, पृथ्वीउल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुगत स्वरूप हैं, परयुगत अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, परयुगत अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंत हैं, अबंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, नचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट शंत्वा प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जीवता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वा प्रसाद नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जाता है न पाता है निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहंद है के राजक रहंद है क्रीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं प्रणाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है कि नरकं प्रणाश है बहस्तुल निवास है कि सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जोरत जमाल है कि अचलं प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलं अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार छंद त्वा प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास कृत तर तुरास अजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन शिज गात आज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अणब्रण अनंत ताता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद करुणाल है अरिकाल है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खालकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है अरिगंजन है हरे प्रतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है।

दुख रोग संताप उतरे सुने सची बाणी। संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू

की प्रभ आ गए अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नाओ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत बाणी के बोहेथ चवर ताकत शत्र दे माल।

0: इत संजम दुख जाए पौरी।
1: जिन सचो सच आया उन्हें मंदिर पैर रखो कर तुमने भ्रम कमाया।

भीख को कह ना सकत केहे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतो जकह जह कोट इंदर इंद्राण साहे सहान गन जय।

भगत जन का लुगरा ओढ़ नगन न होई। सकत सिर पाउरी समी पैरत पत खोई। सकत स्यों

तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो।

फिर संकट जून गर्भ न आयो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो।

अन कत है न धावो सफल दर्शन गुर भेटी है मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म सिगार बनावो सफल सुहागण नानका अपने प्रभ पावो बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन हुआ साध संग तिस भेटै हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनिक बाता सब कर रहे गुर घर ले आया रहाउ शरण परे की राखता नाही सहसाया कर्म

पतत पुनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मानुख जन माया परमाया नानक।

सुख खसमर जाई, चिंत अंदेसा गणत तज, जन हुकम पछाता, नह बिनसै नह छोड़ जाए, नानक रंग राता। बिलावुल महला पंजवां महा

जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध कै पूरन आसाए। पै बिन से

रहाउ, अमृत गुण संत बोलते सुन मन है पिलावों। क्वा रस में सांत तृप्त हुए बिखे जलन बुझावों। जब भगत करह संत मंडली तिन मिल हर गावों। करूं नमस्कार भगत जन तूर मुख लावों। उठत

कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी परतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत, मन खुटहर।

निंदक मृतक हुए गए। तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए, भेटे गुरुदेव जय जयकार जगत में।

सुनियत प्रभ तौ सगल उदारण मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है विसारण रहाओ संच बिखियाले ग्राहज कीनी अमृत मन ते डारण काम क्रोध लोभ रत निंद।

सन्मान योग सत्संगी जनों, पिछले दिनों तो ही सिख जगत गुरु नानक पातशाह जी का आगमन पुरब प्रकाश पुरब या अवतार पुरब भी पाकते हैं। सतगुरों का वो दिन जिस दिन साहिब इस संसार विच प्रगट हुए, प्रगट दिहाड़ा वो मनाया जा रहा है। सतगुरु बख्शिश करे, सतगुरां दे बख्शे हुए उपदेश साडे हिरदे वसन जी, असीं गुरु की गल नूं समझ के सच्चा जीवन जात सिखीए जी। तो आप संगतां दा धन्नवाद है। मैनूं लगदा सी कि अज संगत नहीं आएगी क्योंकि अज भी अमेरिका की धरती से उन्हां दा अपना खास दिन है, छुट्टी का दिन है। पर आप जी जितने भी आए हो जीआं नूं आप जी का धन्नवाद है। कल फिर इस समय मिल बैठांगे जो गुरु कराएगा, मिलजुल के साहिब की कीर्ति करांगे जी। गल्लां चुकां लिखीआं आनंद साहिब जी।

माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे अठो नंदन प्रथम राग भैरो वह करे संग पंच राग ने संग उचरे ही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगले पुनिया असले की पही बारी

संघ राग नहीं पाचो थापै गौंड करी हर देव गंधारी गंधारी सिवती उचारी तनाश्री ए पाचो गाई माल राग को सकसंग लाई मारू मस्त अहमे वारा प्रबल जंड को सके उभारा खटे भोरा नंद गाय अष्ट माल को सकसंग लाए पुनियायो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत।

कंदड़ा रोवण हार हुआ दंदार हो वह मैं न धो वह सपनंतर संसार हो जो बाजी कर पर मैं भूली छूट मुटी अहंकार हो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रते गुरपुर राखे नानक सहज सुभाए बड़ा हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना ए जग झूठ पसारोवा सच्चा कर सचड़े सेवी है सच खरा सचिया रोवा कूड़ लग जाता है न पासी आगे लहने ठाऊ अंतर आओ न बैसो कही है जो सुन जाए कर काओ

मरण लिखाए मंडल में आए स्वर्गवासी माता बलदेव कौर शीना जी की याद में जुड़ बैठी परम सत्कार जो सत्संग जी हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ते सी माता जी दे निमित्त श्री सहज पाठ दे पाठ ते कीर्तन, उस तो उपरंत अरदास ते हुक्मनामा जो सरदार परमजीत सिंह शीना ते सरदार गुरमीत सिंह शीना ते समूह शीना परिवार वालों सेवा करवाई गई सी, उन्होंने निमित्त गुरु कृपा करे विछड़ी रूह नूं सदी विकार लई अपने चरणां च वासा देवे ते पिछे परिवार नूं इस सदमा सहण दा बल बख्शे, परिवार अंदर सुख शांति बख्शे, साडी अरदास है। ते आप समूह संगतां दा दोनों भरावां वालों सरदार परमजीत सिंह शीना ते सरदार गुरमीत सिंह शीना ते समूह शीना परिवार वालों आप समूह संगतां दा जो सवेर तों आ के सारे प्रोग्राम दे विच हाजरी भर के उन्हां दे नाल दुख समय साथ दिता, सब का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दूरों नेड़े आ के आप जी ने समा दिता ते हुण देग बरत रही है, जिन्होंने देग लै के लंगर नहीं छकिया, हुण बेनती है परिवार वालों कि लंगर छक के जाने की कृपा करनी जी, ते नाल चाह दा लंगर भी है, लंगर वह भी छक के जाने की कृपा करनी। ते हुण इत्थे ही इस प्रोग्राम की समाप्ति हैगी है। ते राय परिवार के जो आए ने सारे संगतों उधरों, उन्होंने बेनती है, उन्होंने प्रोग्राम ठीक 2:30 बजे शुरू होने लगा इतने मेन हाल से जी, तो वो 3:30 बजे तक हैगा, 3:30 बजे फिर साड़ा होर प्रोग्राम हैगा। सो बैक टू बैक प्रोग्राम चल रहे हैं अज्ज, तो संगतों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, जिहड़े बहुत संयोग दे रहे हैं सारे प्रोग्रामों के, हर एक का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद निजी तौर पर, नाल प्रबंधकों का भी, कमेटी का भी, इतों की का सारे का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। ते सो जिन्हां देग नहीं लई कृपा करके वो आवाज मार के देग लैण दी कृपा करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

भोजन प्रकार होवा, भोजन भाव ना ठंडा पानी ना कापड़ सिगारो, गल संगल सिर मारे उबो ना दी सह घर बारो, एब के राहे जमण नाही पछताने सिर पारो, बैन साचे को बेली नाही साचा एहो बीचारो, बाबा रोवह रवह सो जानी है मैल रोवह गुण सारे वा, रोवह माया मुठड़ी धंधड़ा रोवन हारे वा, धंधा रोवह मैं न धोवह सुपनांतर संसारो, ज्यों बाजीगर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारो, आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए, नाम रते गुर पूरा राखे नानक सहज सुभाए, वड हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना, एहो जग झूठ पसारोवा, सच्चा घर सचड़ा सेविया सच खरा सचया रोवा, कूड़ लब जा साए ना पासी अगै लह ना ठाओ, अंतर आओ ना बैसो कहिया ज्यों सुंजे घर काओ, जमण मन वड्डा वे छोड़ा बिणसे जग सबाए, लब धंदा माया जागत भुलाया काल खड़ा रुआए, बाबा आव हो भाई हो गल मिल है मैल मिल देह आसीसा है, बाबा सचड़ा मेल ना चुके प्रीतम किया देह आसीसा है, आसीसा दे वो भगत करे वो मिलिया का क्या मिलो, एक भूले नावो थेवो थावो गुरसबदी सच खेलो, जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाणा जुग जुग सच है वेसे, साजन सैन मिलो संजोगी गौर मिल खोले फासे, बाबा नांगड़ा आया जग मह दुख सुख लेख लिखाया, लिखेड़ा सहा ना टड़ै जेहड़ा पूर्व कमाया, वह सच है लिखया अमृत बिखया जत लाया तत लागा, कामण यारी कामण पाए बोरंगी गाता, होछी मत पया मन होछा गुड़ सा मक्खी खाया, ना मर जात आया कल पीतर नांगो बंद चलाया, बाबा रोब हो जे किसे रोबना जानियड़ा बंद पठाया है, लिखड़ा लेख ना मेटिया दर हकार आया है, हकारा आया जा तद पाया रुन्ने रोबन हारे पुत भाई।

नानक जुग जुग जान से जाना रोब है सच संभाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वचन त्यो लोहे जियो। गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो। अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रपाश जियो। सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज रखो हर जन केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कहा सा बात जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सा बात जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जद हर प्रभ पाणा पावे। आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल में लावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निर्जात जियो। तुर लिखिया प्रमाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पाज जियो। सतगुर भाणे आपने बह परवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै जद मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु प्रतख होंदा मैं राज आप टिकाया। सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो। के सो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर भावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा खोल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलया पुरख सुजान जियो। रामदास छोटी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन ले रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु।

धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जिस मिले हमको शांति आई। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई। धन धन हर भगत सत

धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा, जन वैरी मित्र हमको सब सम दृष्ट दिखाई। धन धन सतगुरु मित्र हमारा, जन हर नाम श्यो हमारी प्रीत बनाई। धन धन सतगुरु मित्र हमारा,

තනයන්ද මොකවතක දුරුගන්ත පෙනසම දනලාන පිරිත බෙහයි මේක විනා ජෝ කෙති ජය ගෝවද පජනු මෘත සවකාම් ජෝ කෘපණ කිනාර්ථ දාම් තන් තන් තේ දින ජය කඩව සවරණාව නාන්ත කවල් වල ජව රහතව කිශවර කමාවත මානේ ප්‍රීත මුක ගණ්ඩලාවත ජානන හර ප්‍රභු ප්‍රවීණ බාර පේකන කාවු පී නම ප්‍රදේශ යාපන කර ආස ජාති ජන්මය මරය ජස්කේ අන්තරවසලන කාර්තස්කේ සීත්‍ර සංසාර जो तुम पाने तन प्रव जाता नान के उन जन चन पराता करो बिन्ती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया पे माने आपे आप अकटन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत निराव पाव सियान सगल तेरा है सब का जाने आत्म की रहत जिस पाव है तिस ले लड़लाए तंत्र अंतर या सुमाई सो शिव जिस कृपा करी निमक निमक जब नानक हरि श्लोक काम करो दियारे लोभ मोह मिनस जाए अहमेव नानक शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस चाकर को रखुन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सुमृत परम गति पावे जय प्रसाद वसि सुख मंदिर तिसे ते आय सदा मनंदर जय प्रसाद गृह संग सुख वसना आठ पैर समृद्ध सरसना जय प्रसाद रंग रस भोग नाम सत्याय ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ परम्बराढ़ावे तिसे त्याग तव लुभावे जय प्रसाद सुख से सुई जमने आठ पैरता का जस गा भी जय जय प्रसाद तू सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तुर रहता तनुण सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्राप जी जब दरगह मन पाव है नानक पासे ती कर जावे जय प्रसाद रो कंचन ते ही लवलावत सलाम स्नेही जय प्रसाद रौला रहत मन से पावे हर जस कहते जय प्रसाद रसवि से ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रवता का जय प्रसाद जी को न पहुंचे मन सास सास गुरु प्रभुचे जय प्रसाद भाई दुर्लभ देहे नानता की भक्त करे जय प्रसाद भूखन पैरी जय मन तिस्मत के वाल उसकी जय जय प्रसाद अस्वस्थ सवारी मन तिस प्रभ को कबू न विसारी जय प्रसाद बाग मिलक तना राग पुरे प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उर्त बैठ सत सत्याय सत्याय जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखे जय प्रसाद करे पुन बोध दान मन आठ पैर कर इसका ध्यान जय प्रसाद तू चार व्यवहारी तेस प्रभ को सा सा चेतारी जय प्रसाद र सुंदर रूप सुप्र सुमृत दान रूप जय प्रसाद त्रिनी की जा सुप्र सुमृत दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने कर नाथ जय प्रसाद के केव समाज जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहज वसना जय प्रसाद हाथ कर चले जय प्रसाद संपूर्ण भले जय प्रसाद ब्रह्म गति पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रत्याग भगत लागो गौर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू पर संसार प्रभु को मूल मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड दुता को जाप जय प्रसाद रे कार्य पूरे तिसे जन मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे दुता सुराज जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जब सोए

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी स्तनर लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी स्तनर दूप जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान जैसे राज रंको लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर जे एक जो बासु धाको को दखो चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का गुनाओ नानक जो पाव का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मुक्ति निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी का मन हो प्रकाश जैसे तरु प्रे आकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सदर समान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सलगरी नाथ बस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर में ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पे ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि मत वर्षे ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुद्दा ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल ज्योता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी के प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी लेता बंधा ब्रह्म ज्ञानी का हो सो फला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला

रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सासे जाग ब्रह्म ज्ञानी अम्ब त्याग ब्रह्म ज्ञानी केवल परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी का हो या चिंत ब्रह्म ज्ञानी का अंदर मूल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर सुड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी का सकल मनवाही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी कुछ दादेश ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाय दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी कुछ दा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टा करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी

0: ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਿਤ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ ਕਰਨ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਪਸਕੋ ਮੰਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਸ ਨ ਮੰਤੀ ਟਰੈ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਿੱਥੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਤਿਸ ਬੈਸਨੂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨੀ ਬਾਂਛੈ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਰਾਚੈ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਨਾਨਕੋ ਵੈਸਨੂ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪ ਮਲਖ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤਨੀਤ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਐਸ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤੁਮੈ ਸੁਧ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨ ਆਵੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੁੱਝੈ ਮੂਲ ਸੁਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸੂਲ ਚਾਹੋ ਵਰਣਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚਾਹੋ ਵਰਣਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕਉ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰੈ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ ਸਰਬ ਰੋਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਬਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੇ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਾਪੀ ਆਗਿਆ ਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਵਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨ ਕਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆਸ੍ਰਮ ਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਰ ਸੁ ਨਿਖਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛੱਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਥ ਅਰਸਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਾ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਚਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥਕਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਦਿਨ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਾਰ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰੂ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ कई कोट की ने बहुपात प्राप्त हुए ब्रह्म है समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्र कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सद सद ही जीवे अमर पय सद सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे अपने जन को सास सास समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण है जल थल महील सोए अष्टपदी करण करावण करण है जोग जो तिस पावे सोई होग खिन में था पुथा पणहार अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे तार तर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई प्रभु पावे मान कगत पावे प्रभु पावे ता पत्थर त्रावे प्रभु पावे बिन सास ते राख्या प्रभु पावे ता हर गुण पाखे प्रभु पावे ता पत दुधारे आप करे अपन बीचारे दुहा सिरे का आप स्वामी खेले बिकसे अंतरजामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवरने आवे कहु मानक ते क्या हो आवे जो तुस पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब कुछ ले जो तुस पावे सोई करे अन जानत भिख्या मह रचै जे जानत अपन आप बचै पर में भूला जाय दिसता वै निमक माए चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन नाम मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाकर दृष्टि कछु न आवै तिस तत्काल दै जिस प्रगटावै जाको अपनी करे बख्शीश ताका लिख नगन जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावण सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भाव है सोई फुन थियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हरख रंग हसे कबू निंद चंद व्यवहार कबू ऊ बकास प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावण हार कबू नृत्य करे भूपात कबू सोई रह दिन रात कबू मां क्रोध बिकराल कबू सर्व की हो दरवाल कबू हुए बैबड़ राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू अप कीरत में आवे कबू भला भला कहावे ज्यो प्रभ रख तिवही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बिख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस पतंग हुए जिया अनक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभु पावे तिवे नचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा वरना कोई कबू साध संग ते हो पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म के संग ज्यो जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो तस्माना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुहान जो जाने वह जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरै भोजन प्रमावै तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे तनवंता हुई कर गरबावे तृण समन कच्छ संग न जावे बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआई गुर प्रसाद जाके मिट अभिमान सोजन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे शरम पावे सगले बृथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकने आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब अलग जाना मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब भे जाना मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कहु बैरी मीत तब लग निचलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म रह दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानको छूटे सहस खटे लख को उठतावे तृतन आवे माया पाछ पावे अनक भोग भिख्या के करे न तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करने हार इसके हाथ कहां विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किछ किन्न स्वप्न रंग सबते दूर सबू कै संग बुझे देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक मन न बिनसे आव न जाए नानक साधी रहा समाए आप उपदेश समझे आपे रचा सब के साथ आप किन्नो अपन विस्तार सब कछ उसका ओ करण हार उसते पिन कहो कि छोए थान थरन तरे कैसोए अपने चल ताप करण हार कौतक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुख ना जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत हुए मलीन संत के दुखन शोभाते हीन संत के हते को रखे न कोई संत के दुखन थान प्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक पीतर है संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिद जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सबको छले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए संत दोखी का थाव को नाही नानक संत पावे ता ओए पी गत पाही संत का निंदक महाताई संत का निंदक खेन टिकन ना पाई संत का निंदक मा हथियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत भाव है ता उसका पी हो मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का निमित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाव नानक संत भाव है ता ले मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटे संत का दुखी कित काज न पहुंचे संत के दुखी को उद्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किचना है अपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को और न रखन हार सा नानक संत पावे ता ले उबार संत का दुखी यूं बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक इंधन नहीं त्रापे संत का दुखी छुट्टे अकेला जो बुआट तिलखेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत कीर्तनंद का तुर ही पया नानक जो तुस्पावे सोई थे आ संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजन है ऐसा संत का दुखी उठ चल निराशा संत का दुख न तृष्टा कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्तना मिटै कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओ करण हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याओ सास ग्रास सब कछ वर्तै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तजो सियाण पसुर जनो सिमरु हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए अष्टपदी मानक की टेक बिरथी सब जान देवन को एक क्या भगवान जिसके दिए रह गाय बहुर न तृष्णा लागे आए मारे रख है को आप मानक कह किस ना ही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ पुरोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघ्न ना लागे कोई उस्तत मन में कर निरंकार कर्मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म शरण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ भागी तेजन जगमाहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत क्यों सोझी जान नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्ह निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपना पसुज जिसकी जानो कृष्णा बुझ है साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अनजन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहिला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिज्ञा गुर प्रसाद तत् सब बुझ्या जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल न किछ जन्मे न किछ मरे अपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रच थाप उथाप अवनाशी नाही किछ खंड धारण धार रो ब्रह्मंड अलख अभेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरह तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दोख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करै बिड़पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किच करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुपाए हो ऐसो होए करणे हार पछाण सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सत्य सा दृष्टाना जिससे उपजे तिस माए सुमाए ओ सुख निदान उन्हू बने आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उधरिय नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंड अनहार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रभा पे आप आपन किया कछु ना होए जेसो प्राणी लो चै कोए तिस बिन नाही तेरे कछ काम गत नानक जब एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जहाँ सब किश तिसका दिया दर्भ है अत सूरज जी कऊ कहावे प्रभ की कला बिना कहता वह जे को होए बह दार जिस देन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थम मैं थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में हमारक पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बात छो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तुम तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरे संग लपट रिहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन कर पाया तज विमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय महतोल लाद के पसंत है संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कह सब कोय मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ता कह सब बलिहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर प्रसाद कहो अपना जियो साध की धूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़भागी पाइये साध संघर कीर्तन गाइये अनक बिघन ते साधु राख है हर गुण गाये अमृत रस चाख है ओट गही संतह दरियाया सर्व सुख नानक तह पाया मृतको जीवा लणहार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किछ तिसका ओ करण है जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल ए करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तहलोए जाके हृदय एको होए सच करणी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्त्या साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रै गुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अवनासी प्रभु मन में राख मानक की तू प्रीत त्याग तिसते परै नहीं किच कोए सरम निरंतर एको सोए आपे बिना पे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाऊ नानक के मन एह नराउ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नित्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपीसर ग्रिस्म भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक किस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला के मितनाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जान पूत सगल परोई अपने सूत सोमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्या वैसे ते गुण में जाको परमाए जन्म मरै फिरया वह जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै करंग नाना बिद कीनो बिसार प्रभ बनासी ये कंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपने कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे स्मृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे प्रिय सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब महेशमाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाके हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत की है सब सत अपे जाने अपनी मितगत जिसकी सृष्ट सो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मितना जाने किया नानक जो तुस पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्मात जिन बुझे तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे उदाते दुख का टनहार जाके संग त्रै संसार जन का सेवक सोवड़ पागी जन के संग एक लिवलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आज सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सवधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ वक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भो होए बसाना जिस ते बुझा तिस माहे समाना बस माहेले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाए बुझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर कौ सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक ओपरा पालनहार सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मत कोई न लाखे प्रभ के सेवक कौ को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाए नानक सो सेवक दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैकल रखे भसम करै लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काढ़ ताप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन कर्तव्य पात तिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे न राखे अब न कोई सरब जिया का राखा सोए काहे सोच करहरे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिय पिय मृत्य मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरु मुख पाया तिस किच अव नाही दृष्टाया नाम धन नम रूप रंग नम सुखर नाम प्रसंग नाम रस जो जन तृताने मंत्र नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जस जे बात दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करह भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रह है समाये जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ से हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लहे मन तन अपना तिन जन देह जिन जन अपना प्रभु पिछाता सोजन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसका दर्श सब पाप मिटावे अवर स्याण सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरुख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवको गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बिकार ते हाटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख विभागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सुवार, नानक सतगुर सिख को जी ना सुमार, गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्याव, मन वेच सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा कर तो इन्हें कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म, एक कह अपनी कश परम, सहस स्याण पर ले न जाइये, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुन कर बचन कर नागाने, मन संतोखा तंपतियान ने, पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख्या हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है जिस लय मिलाए, जेबा एक उसत अनेक, सतपुरख पूरन विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम गोचर परम निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सोहे, उस पुरख का ना ही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तय तेना से, तप्त माहे ठांड वरताई, अंत प्या दुख ना ठेपाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पौ चूका निर्भो होय बसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चुके ब्रह्म गवन, सुन नानक हर हर जस शरण, निर्गुण आप सरगुण पी ओहि कला, धार जन सगली मोही, अपने चरित प्रभाप बनाए, अपनी की मतापे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रकाश साध के संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी, श्लोक भजन भिक्षा सगली छार,
1: संत दे नाम मिल करो विचार, एक सिमरन नाम आधार, अवर पाप समीत विसारो, चरण कमल में अवर धारो, करण कारण सो प्रभु सम्राथ, दृढ़ कर कहो नाम हर वाथ, एह तन संचो हो वह भगवंत, संत जना का निर्मल मन ते आसरा को मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंठ उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावन, जिस सुख कौन तवांछा मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा पजर की शरणियन को पावी, रोग ना जाए रोग मिटा रव खदलाए, सर्वण दान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह प्रवान, मन प्रभो दोहर कह नाही, दै दे ताव ते आवे ठाए, ताको बिघन लागे कोई, जा कर दै बसियार सोए, कल ताती ठंडा हरनाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण हो आस, भगत भाया तुम प्रगास, तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जा फांसी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म रह चोखा चोखाचा, आवा गुण मिटा ब्रह सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, इं रतन जन्म का होय उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, मन को भावना छूट न हारे, सिमरत सात वेद विचारे, हार की भगत करो मन लाए, मन बचत नानक बल पाए, संग न चाल तेरा तन।

Einladen Gunungao, Kunungao, Tirutrasmel, Binzehome, Bikapalo, Hohen, Chantavasa, Sokarnalo, Sagira, Sarnam, Samahalo, Shardsian of Salimana, Sadh Sangapava, Sajitana, Harapunji, Sanjikuru, Behar, Niha, Sokadarga, Jakar, Sarbanatare, Kodeko, Kohonan, Jaka, Mastakaliko. Eko Jape Ko Salahi Simreko Maniahi Eko Seke Gunga Nant Mantan Jape Pagavant Eko Eke Karyap Purna Purreo Pravyap Anik Bithari Te Paik Rad Prashtake Mantan Antarek Pravrata Gur Prasad Nanik Eka Jata Sloka Hirta Hirta Pravyaya Pariyato Sharnai नानक की प्रभु बिनती अपनी भगति लाय अष्टपदि जाचक जन जाचे प्रभु दान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे शब्दा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सा साहिब प्रभु तुम्हें ते आवो चरण कमल सों लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक कोटि को आधार नानक मांगा नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टि महासुख होए हरस पावे बिरला कोई जिन चाखिया उसे जन त्रिपता ने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो पार परे प्रेम रस रंग उपजय चाव साध के संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाश आंदन लेवलाग बड़ भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जान गो प्रभु होयो दयाल सेवकी नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख परम गया इश पुनि श्रद्धा सब पूरी रब रहा सत्संग हजूरी जिसका सतन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो के विसरे काल न पाने सो के विसरे जे किया जाने सो के विसरे जन सब कुछ दिया सो के विसरे जे जीवन जिया सो के विसरे जगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो के विसरे देखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरु पूरा तत्व है बुझाया प्रभु अपना नानक जन्म त्याया साजन संत करो हे काम आन ते आग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जो पवरा नाम जो पावो भगत भाई तरी है संसार बिन भक्ति तनो सीशार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल तो काओ तनास नानक नाम जो पगुंतास

साध चरण तोय। भगत जन कह मन तन रंग बिरला को पावे संग, एक भक्त दीजे करमया गुरप्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नान करया सर्व समाए, रब बख्शांद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटां करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सोए पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत। हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बड़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। फलि सो करनी सो बात, हृदय दसे पूर्ण गुरुमंत।

फिर जाप अष्टपदी। जब अकारे कछ न दृष्टेता पापों तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण तिहन न जापत तब हरक सोग कहो किसै व्यापत।

अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम अपन केले आप वर्ती जा नानक करण हार न दूजा जब हो तो प्रभ केवल थनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक हर गम पार तब नर्ग सुर्ग कहो कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सो पाए तब शिव सकत कहो हो के तठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलते आप करना हार नानक ठाकुर गम पार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो हो के सो होए जब अवगत अगोचर प्रभु का तब चित्र गुप्त कश पोष्ट रेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपने आप आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसै भूख कवन त्रिपतावे करुण करावन करणाहार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा

जब अपने आप उतारे तो सगन आप सगन कहा विचार है, जय अपनू ते अपने आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कही है तेरा। बिस्मन बिस्मरे बिस्माद नानक अपने गत जानो आप, जय अशल अशेद अभेद समाया, ऊहा किसे व्यापत माया, आप को आपे आदेश, तिह गुण का नहीं प्रवेश, जह एक है एक एक भगवंता, तै कौन चिंत किस लागे चिंता, जह अपना पाप पतियारा, तै कौन कथा कौन सुनना हारा, बहु बेअंत उच ते ऊंचा नानक आप सको आप है पहुंचा, जह आप चो प्रपंच कार, तिह गुण में कीनो विस्तार, पाप बुनता पे कहावत को, नरक को स्वर्ग वंशावत, आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम भय पार, दोख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की बखियान, आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच चैतो नानक एक है, जय अवगत भगत है आप, जय पसरै पसार संत प्रताप, दोहों भाक का पै तनी उनकी शोभान हो बनी, आपै को तकर आनंद चोज, आपै रस भोगन निरजोग, जिस भावै तुस अपना इलावै, जिस भावै तुस खेल खिलावै।

दयाल सब प्रभुत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। परत पाल जी अनुभव पहान जो जो रचित सत्य हाथ जैसे

राम रस पियारे जेह रस बिसर गए रस और मुए क्या रोई है जो आपा फिर ना रहाए। बंदिया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, पता नहीं किन्ने के इथों आके चले गए, कोई गिनती नहीं है। आपो अपनी वारी दे नाल सब नू जाना पैना, कोई भी इस संसार ते थिर नहीं रह सकया। शेख है आती जग ना कोई थिर रहया, जिस आसन हम बैठे के ते बैस गया। वारी आपो अपनी कोई ना बंदा थी। सगुरु प्यारे साडे सत्कार योग स्वर्गवासी रिटायर्ड SSP स्वर्गवासी सरदार अर्जन सिंह जी, जिन्हां दी मिठी प्यारी सलाना याद विच आपां जुड़ बैठे हैं। सतगुरां ने उन्हां नूं जिन्ने सवास बख्श कीते सन, सवासां दी पूंजी पूरियां करके पिछले साल इस मात लोग तों रुखसत हो गए सन। परिवार उन्हां दी मिठी प्यारी याद मना रहा है सत्कार योग। उन्हां दे धर्म पत्नी बीबी तरन कौर जी अते उन्हां दे सपुत्र सरदार कुलविंदर सिंह जी, सारा ही परिवार बहुत ही निघा परिवार, गुरु घर नाल जुड़िया होया परिवार है। गुरु चरणा विखे अज इन्हां ने विछड़ी आत्मा दे निमित्त श्री सुखमनी साहब जी दे पाठ करवाए ने। कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी ऐ लाए ते आना, आप तरह सगले कुल तारे हर दर गए पत सिंह जाए। आओ मैं ज्यादा समा आप जी का नहीं लैना, 10 मिनट आपां दो शब्द गायन करके फिर आप जी पासों खिमा दे रच हो जाना, अरदास बेनती होएगी, सतगुरां दा मुख वाक होएगा। प्यार सहित मिल करके गायन करिए।